घोल यूरिया 4 ml प्रति लिटर पानी में मिसाई संपूर्ण पात भिज्ने गरी टप ड्रेस गर्ने समय में छर्कनुहोस्। टप ड्रेस गरिसकेपछि कम्तीमा 24 घंटा खेतबाट पानी बग्न नदिनुहोस्।